0: उसको पकड़ मेका ठेका रहा नहीं
1: कोई हाकिन अमराय इज इन सिडनी ट्रू और फॉल्स Poi Hākena Marae is in Sydney. True or false? False. Poi Hākena Marae is in Whangaroa.
2: Upoku Pakaru Resources proudly sponsored by Waikato Tainui.

0: उसको पकड़ मेका पिकर आना ही क्या तारंगी काहू इज द वाइफ ऑफ किंगी कोरोकी ट्रू और फॉल्स क्या तारंगी काहू इज द वाइफ ऑफ किंगी कोरोकी ट्रू और फॉल्स True. Tiki took her mother's name, Te Atairangi Kahu, when she became queen.
1: Upoku Pakaru Resources proudly sponsored by Waikato Tainui.